सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, हर थां रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ पाए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैंड ते ना तुरी, तू वह आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो भाई। आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते हैं।

भगत जी ने गल बड़े कमाल दी कह दी, कहते ने हे परमात्मा ये ख्याल करी मैं एक भगत होने के नाते मंग रहा तेरे को ना कह दी कि बड़ा लालची है सब कुछ ही मंगी जाता है। मैं ना ही कीता लभो एक नाओ तेरा मैं फबो। हे परमात्मा ये कोई मैं लोभ लालच नहीं कीती, ये मत समझी कि मैं लालची हो गया, नहीं लालच उसनू कहिंदे ने जिसका ना अगे ना पिछे ना धी ना पुत्र ना कोई साथ ना संबंधी कोई भी ना होवे, फिर वो माया पिछे भजा फिरे उन्हें कहो ये लालची है। ते जिदा भाई घर बार है धियां पुत्र ने बाल बच्चा परिवार है साग संबंधी ने सौ किसी नाल आना जाना मिलना करना उन्हें तुसीं लालची नहीं कह सकते, उन्हें जरूरत कह सकते हो, इहदी जरूरत है, इन्हें जो मंग कीती है जरूरत वास्ते मंग कीती है। पर असीं अज लफ्ज लालच वरत देने जी बड़े लालची हो गए ने, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ दीआं लोड़ां इतनियां वध चुकियां ने तुसीं उहनूं लालची नहीं कह सकते, कह सकते उहदीआं लोड़ां इन्नियां ने। आपां अपने वल वेख लिया करिए जे साडीआं लोड़ां वध सकदीआं ने साडी डिमांड्स वध सकदी है ते भाई किसी भगत दी नहीं वध सकदी, उहदी वी वध सकदी है। इसलिए ख्याल करना मैं ना ही कीता लभो एक नाउ तेरा मैं फबो। हे परमात्मा यह मेरा लोभ लालच नहीं है, तू वेख मैं तेरा नाम ही ते अपने हिरदे विच वसाया है। हुण जिथे ना वस गया भगत जी कहिंदे ने नाम नूं मुख रख के सब कुछ मंग लो, परमात्मा देण नूं तैयार ने। फिर कहिंदे ने कहत कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जाने। बस ओ परमात्मा साडे हिरदे विच वस गया, उसकी यही आरती है, उसकी रजा विच आ जाइए, उसके हुक्म विच आ जाइए, जिवें वह रखता है जिवें वह चलांदा है जिहड़ा उन्हें मार्ग रस्ता बनाया उस ते चल पईए। भगत जी कहिंदे ने इह साडी आरती है, इसलिए आओ तुझ बुद्धि अनुसार सेवा कीती प्रवान कर लेना कि इसनू याद कर लेना कि गुरु अगे आरती गुरु की पूजा साडी श्रद्धा साडी पावनी साडी निम्रता ते गुरु का हुक्म मनना है। ते जिन्हें जिन्हें गुरु का हुक्म मन लिया जो तिस पावे सो आरती होए। इसलिए भाई आपा कोशिश करिए कि दुनियावी अडंबर छड के सच्चे नाम दे नाल जुड़न की कोशिश करिए। कल कोशिश करांगे इस तो अगला प्रकरण अगे रंभ करिए। कोई रसना मानी ना रहे, सारे मिलके आखो जी।

ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुरु मूर्त होई, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुरु

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू अनंत काल

रूप रंग अनरेख भेद को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अभितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान शाह शाह गणी जय आद सच।

पानी के बोध नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण कर देने हजूर फरमान कर देने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह वरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहिंदे ने।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जिहड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने, मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा। मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन उपदेश जय देव नामा विप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जय देव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे। भगत जय देव जेडे उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्ना ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए, ए ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करते हैं। आज आप भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे।

चलते चलते भगत जी हिंदुस्तान दे विच एक बड़ा मन्या होया तीर्थ स्थान है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का मंदिर बड़ा मशहूर है। इसे मंदिर धन गुरु नानक साहब भी गए सन। जिस वेले आरती का समा होया धन गुरु नानक साहब मंदिर विचों बाहर आ गए तां पुरी का जिहड़ा राजा सी उसने अपने दरबारियां समेत आके गुरु नानक साहब नूं कहा सी महाराज आरती दे वेले तुसी मंदिर विचों बाहर क्यों आए हो। तां धन गुरु नानक साहब ने उस वेले कहा सी राजन तुसी पत्थर दियां मूर्तियां दी आरती करदे हो दीवे बाल के कुछ फुल रख के धूप जगा के चवर चलांदे हो तल खड़कांदे हो। एक आरती उस जगन्नाथ दी खंड ब्रह्मंड पै करदे हन ते राजा हैरान हो के कहन लगा केड़ी आरती खंड ब्रह्मंड करदे। उत्थे फिर सतगुरां ने कहा सी राजन आकाश वल देख। राजा कहन लगा आकाश दिखे ते साहब जी कहन लगे नजर की आया। कहन लगा महाराज तारे चढ़े ने चंद्रमा चढ़े। साहब जी कहन लगे बस एहो कुछ ही देखिया। सतगुरु कहन लगे राजन जब तू आरती करदा सै एक थाल तेरे हाथ विच सी उस थाल दे विच दीवा बालिया सी कुछ सुचे मोती सन धूप सी कुछ फुल। ऐ राजन वो जिहड़ा परमात्मा है वो केवल पत्थर दियां मूर्तियां नहीं वो ते हर जगह जर्रे जर्रे विच है। वो जिहड़ा अकाल पुरख है इतना ब्यांत है कि राजन सुन ये जिहड़ा गगन है ये जिहड़ा आकाश है एक थाल है ये जिहड़े तारे हन ये मोतियां दी तरह हन ते ये जिहड़ा चंद्रमा है सूरज है ये दीवे हन। एक चवर तू चला रहे हाथ विच पकड़ के ते ए जिहड़ी हवा है ए उस परमात्मा नूं चवर कर दी है। उत्थे फिर शब्द उचारिया सी गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती तूप मल आन लो पवन चवरू करे सगल बन राए फुलंत ज्योति। तू ते थोड़े जे फुल रख के कह रहे हैं कि मैं आरती करदा हां एक खंडा ब्रह्मंडा विच जड़ी बनास्पति है जड़े फुल हन ये सारे ओदे चरणा विच हन। उस जगन्नाथपुरी नूं भगत जयदेव जी चले हुए और अज शहर दे बाहर जा पहुंचे। आओ एक बारी सारे करो रसना।

जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हौ तुमरी करो नित आस प्रभु मुए कब गल लावेंगे। कदों ओ दिन आएगा जदो तू मैनु अपने गले लावेंगा। गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है। ते जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ए बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल

चाहना ते है तू परमात्मा दे नाल मिलाप, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो तां तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसे

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनु अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप

बंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन

दो मित्रां नूं आपस विच कम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा कम करना ही, कहन लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन मुलाकात

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहते ने, मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

मुख बिरला जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है,

अनेक तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमरत शास्त्र जी कर करया खट कर्म करमता से भगत भले।

गुरु के सिख। आज जो कीर्तन का माहौल है, आप ते जो ये संगत दे चरणा विच हाजरी पतंदा गुरु दी हजूरी विच, सो सत्संग जीओ। हुणे आप जी ने बड़े सत्कारयोग दीदार सिंह जी चाना पुराने जो गुरसिख हन जिन्हां नूं पता है कि कीर्तन किवें गाया जांदा सी, अज हर एक ने कीर्तन नूं अपने स्टाइल नाल बना लिया है। जो कीर्तन दी पुरातनता है, जो सिखना है, जो राग है, राग नाद सब सच है, पर इस नूं गावे कौन, इस नूं सिखे कौन। हां, पर कुछ गुरमुख प्यारे प्यार वाले पुरातनता जिन्हां ने हाली तक कायम कीती है, हुणे चाना साहब ने कहा कोई चीज सुनाओ। जदों भी कीर्तन शुरू होवे, अजकल महीनिया विच दरबार साहब की मर्यादा यह है कि बसंत दे विच शब्द पढ़िया जाए, सब तो पहला यह मर्यादा है। तो गुरु कृपा करे, मैं आप जी नूं बसंत बसंत चढ़िया फूली बन रहा है, ए जी जंत फूले हर चित लाए। गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन ए हरियावल इस करते जो बख्शिश कीती है, गुरु ने जो कृपा कीती है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। और जो ए रीत है बड़ी पुरातन रीत है, गुरु अर्जन देव पातशाह जदों बसंत राग नूं खोलना, पंज शब्द बसंत दे पढ़ के उस तो बाद कड़ा प्रसाद करना, ए मर्यादा है। और जो ये ताल होएगा, ये पांच ताल दी बराबर दी सवारी है, अशोक ताल है। आप बड़े प्यार सहित, क्योंकि सात संगत जीओ असी किन्ना किन्ना पैसा जाके हालां विच खर्च करने हां, आर्टिस्ट लोगां नूं सुनने हां, कलाकार लोगां नूं सुनने हां जाके, पर जेड़े आप दे जोड़े चाड़न वाले कीर्तनीए हन, जद तक तुसी नहीं उन्हां नूं मान दोगे, ओह किहदे कोल जाणगे। सो बड़ी आप दी मेहर है, आपने जो ये थोड़ा जा वक्त बख्शिया है, पांच मिनट दे विच आप दी हाजरी पूरी करके, आप बड़े प्यार सहित गुरु अर्जन गुरु अमरदास पातशाह बसंत चढ़िया बसंत महला तीजा होली बन रहा है बसंत।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साडे कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वल्लों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हां फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हां, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हां, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी वड्डी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की बिद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ए सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ए डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आसा जी बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी एक दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू तो भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो आज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र को सुनो।

आप जी याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी बेनती की सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे भी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं।

प्यारी गल आई समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशन होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे नूं सपोर्ट करते, एक दूसरे नूं सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नूं दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचण दे वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नूं यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जदों पूरियां नहीं होंदियां तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जदों मर्जी चले जाओ। यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तुहानूं जीना ही नहीं आ। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आख दे जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आख दे जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ले, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किवें नहीं जीना आता, असीं तो सोचते असीं बड़ी तरक्की कर गए हैं, असीं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आख दे जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है कहते हैं

उदत जाते जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अपमान उदत पौन पानी बैसंतर।